हरि भक्ति परायण श्री गुरु धुंडा महाराज देगलूरकर विरचित नारद भक्ति सूत्र विवरण या ग्रंथाचं क्रमशः वाचन। प्रकाशक हरि भक्ति परायण भानुदास महाराज देगलूरकर धुंडा महाराज मठ उत्पाद गल्ली पंढरपूर। वाचक ऋषिकेश अयाचित। ही वाचन सेवा हरि भक्ति परायण श्री गुरु चैतन्य महाराज देगलूरकर यांच्या अनुमतीनं आणि कृपा

हन्ना हन्ना हन्ना हन्नारी नारी तो है दिल की बीमारी बीमारी रे हन्ना हन्ना हन्ना हन्ना हन्नारी नारी तो है दिल की बीमारी।

0: नजर से मारा, जिसे जहां भी देखा अरे वही वहां दिल हारा। अरे सब बारी बारी सारे नारी के पुजारी, यहां सब की गई है मत मारी मारी मारी।
1: अरे आ आ आ ओ दीवाने, मैं तो तुझ पे दिल धारी, ओ हारी रे आ आ आ ओ दीवाने।

0: everybody.
1: Hi!
2: Smashing! Groovy! Fab!
3: Terrific! Fantastic!
4: What a beaut!
5: ये तो टाइम टाइम की बात है जॉनी, टाइम टाइम की बात।

जब थाप जमके पड़ेगी, तबले पे जब थाप जमके पड़ेगी, सारे मोहल्ले की धड़कन बढ़ेगी।

0: नमस्कार, रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो, आपकी जिंदगी आपकी आवाज। आज हमारे पास आए हैं तैनवाला फाउंडेशन के रमेश जी तैनवाला सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो विश्वास पर।
1: धन्यवाद
0: सर। आपने अभी अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया है जो बच्चियों के शैक्षणिक एक शिष्यवृत्ति योजना आपने लॉन्च की है सर, उसके बारे में आज हम श्रोताओं से बात करेंगे। ये एग्जैक्टली क्या है?
1: ये जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो हमने चालू किया है वो खास करके अपने घरों की बच्चियों के लिए, कन्या के लिए। उसमें हमारा ऐसा सोचना रहा है कि जब परिवार, खास करके जो गरीब परिवार से या जो उनकी लिमिट आमदनी है उस परिवार से जो लोग आते हैं, अगर उनको ये चयन करना होता है कि बच्चों को, लड़के को पढ़ाए या लड़की को पढ़ाए, तो कई बार ऐसा रहता है कि लड़के के लिए तो हम लोग कहीं ना कहीं से पैसे का बंदोबस्त कर लेते हैं और लड़की को शिक्षा से वंचित हो जाती है वो। तो इस प्रोग्राम में हमने ऐसा किया है कि जो प्रभावशाली, जो योग्य लड़कियां हैं, उनको पैसे के अभाव में उनकी शिक्षा ना रुके, ऐसा करके इसमें एक स्कॉलरशिप का बंदोबस्त है कि निःशुल्क उसको पढ़ाई उसकी पूरी अच्छे से हो सके।
0: सर, शिक्षा तो वैसे बहुत सारी होती है, लेकिन किस किस करियर के लिए आपने ये शिष्यवृत्ति की योजना की है?
1: जो हमने इसमें ऐसी कोर्सेज को हमने इंक्लूड किया है जिसमें कि लड़की केवल पढ़े नहीं, वो उसको रोजगार में या उसको सशक्त बनने में, अपने पाँव पे खड़े होने में उसमें उसको आसानी हो। ऐसा मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, नर्सिंग है, या लीगल फील्ड में कोई है, आर्किटेक्ट है, CA है, कोई BEd करना चाहे, तो कोई भी प्रोफेशनल कोर्स जो है वो सारे कोर्सेज को उसमें हमने इंक्लूड किया। केवल जो एक बेसिक ग्रेजुएशन है, किसी को BA BCom करना है, तो मेरा सोचना है जो BA BCom करता है उसको उस समय तक ये ज्ञात नहीं होता है कि उसको जीवन में आगे बढ़ के क्या करना है। तो अदरवाइज सारे प्रोफेशनल कोर्सेस इस शिक्षावृत्ति में इंक्लूडेड हैं।
0: सर, इसमें किस बच्चे को मिलेगा, ऐसा कुछ तय किया हुआ है?
1: इसमें दो तीन चीज है कि समाज में, देश में तो सभी जगह जरूरत है। चूंकि मैं अपने आप को नासिक का वासी समझता हूँ, तो हमने ऐसा किया है कि जो नासिक में डोमिसाइल्ड है, मतलब नासिक को जिसने अपना घर बनाया है, जरूरी नहीं है कि उसका जन्म ही नासिक में हुआ हो, तो नासिक का वो बच्चा हो और उसके परिवार के जो इनकम है, सालाना इनकम है, वो 1-3-4 लाख से नीचे उसकी सालाना इनकम होनी चाहिए। तीसरा इसमें ऐसा रखा है कि भाई कि वो कहीं से और सरकार से या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से भी स्कॉलरशिप नहीं लाई, ताकि ऐसा नहीं हो जाए कि वो एक ही काम के लिए डबल मिले उसको। एंड लास्ट इसमें यह है कि उसकी योग्यता को सिद्ध करने के लिए कि भाई उसको जो 10+2 का एग्जाम होता है हाई स्कूल का, उसमें उसको 75% मार्क मिले, ताकि उससे ये मालूम पड़े कि भाई ये पढ़ाई में योग्य बच्ची है।
0: उसके कौटुंबिक उत्पन्न का भी कुछ इसमें ख्याल किया गया है, उस पर कुछ लिमिट है?
1: हाँ, कि भाई उसके परिवार के जो आय है वो 3 लाख से ऊपर सालाना ना हो, कि परिवार मतलब एक निम्न आर्थिक व्यवस्था से जो लोग बच्चे आए उनको ऐसा मौका मिले, ऐसा एक हमने कंडीशन रखा है। उसमें थोड़ा बहुत हम फ्लेक्सिबल भी होते हैं कि 3 की जगह 4 लाख 5 लाख 5 लाख तक का एक हमारे मन में ऐसा रहता है कि जिसकी सालाना इनकम उसके परिवार के 5 लाख तक है वो इस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई होती है।
0: क्या सर, इसकी चयन प्रक्रिया भी कुछ होती है?
1: चयन प्रक्रिया होती है इसमें, मेनली तो उसको अप्लाई करना पड़ता है, स्कूल का जो 2+ का एग्जाम है और क्या पढ़ाई करना चाहती है, फिर हमारा एक इंटरव्यू पैनल है, उसमें हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भाई वो क्यों पढ़ना चाहती है, कोई आर्किटेक्ट बनना चाहती है तो क्यों बनना चाहती है, उसके समझ में क्या है, आगे बढ़ के वो क्या करेगी। मतलब वी आर ट्राइंग टू लुक एट इट कि ये जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद में एक चेंज एजेंट, लीडरशिप प्रोग्राम समझ लीजिए, स्कॉलरशिप है लेकिन हमारे मानसिकता में ऐसा है कि भाई कहीं ना कहीं ये जाके समाज में एक लीडर बने, ताकि समाज परिवर्तन की जो एक चेन है उसमें एक सशक्त कड़ी के रूप में आगे बढ़ सके।
0: सर, फिलहाल जातिगत आरक्षण का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, इसमें आपने कुछ ख्याल किया है?
1: नहीं, हमने ये जातिगत मुद्दा और जो वंचित वर्ग से लोग आते हैं, हमने ऐसा इसमें कुछ नहीं देखा है। हमने खाली ये देखा है कि किसी भी जात का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, खाली यही देखा है कि बच्चे में प्रभावशाली बच्ची होनी चाहिए, उसके मन में कुछ आगे बढ़ने का लालसा होनी चाहिए और उसके माँ बाप की जो इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम रहे।
0: बहुत सारी योजनाएं सर शहरी ग्रुप के लिए होती है या ग्रामीण के लिए होती है, ऐसा कुछ इसमें है सर?
1: ये सबके लिए है, शहर के लोगों के लिए भी है, गांव के लोगों के लिए भी है, आदिवासी के लिए भी है, जो नॉन आदिवासी, अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सारे कास्ट के लिए। कास्ट से कोई मतलब नहीं है इसका, क्योंकि क्या है? मेरा सोचना है कि जितनी आज समझ हम लोग हर कोई है ना रूरल बैकवर्डनेस की बात करते हैं, लेकिन शहरों में भी गरीबी उतनी ही है जितनी कि गांव में हम सोचते होंगे, क्योंकि गांव के लोग हैं नौकरी पेशा के हिसाब से शहरों में आ जाते हैं, फिर खर्चा है और है, उसके हिसाब से अपने बच्चों को एक अच्छी तालीम नहीं दे पाते हैं।
0: जी सर। सर इसमें और एक मुद्दा है कि आप कितनी शिष्यवृत्ति इनको देंगे?
1: इनकी जो पढ़ाई लिखाई में जो भी खर्चा होता है, मतलब उसके स्कूल का जो फीस है, कॉलेज का जो फीस है, प्लस उनके हॉस्टल में रहने का है, उनके किताबों का है, उनकी पूरी पढ़ाई का जो खर्चा है वो हम उसको बेयर करते हैं। उनकी किताबों खरीदने में कुछ पैसा लगता है, तो इट इज़ लाइक ए कम्प्लीट कॉम्प्रिहेंसिव स्कॉलरशिप जो है वो मिलती है। और कुछ बच्चे बाहर से आते हैं, उनको हॉस्टल का भी जो फीस होता है वो भी इसमें हम कवर करते हैं।
0: सर ये कितने साल के लिए है?
1: ये जितने साल का उसका कोर्स है, जैसा कुछ बच्चे होते हैं वो 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स करते हैं, जो प्रोफेशनल कोर्सेज वो ज़्यादातर 4 साल का होता है, मेडिकल कुछ ज़्यादा का भी होता है 5-6 साल का होता है, कुछ लोग पोस्ट ग्रेजुएशन भी बाद में करना चाहते हैं। तो जब तक उस बच्चे में लालसा है पढ़ने की और वो बता सकता है कि क्यों आगे पढ़ना चाहता है, तब तक हम उसको सपोर्ट करते हैं। तो 4 से 5 साल एवरेज स्कॉलरशिप का इसमें एक पीरियड बन जाता है।
0: क्या इसमें एडमिशन के लिए भी हम मदद करने वाले हैं?
1: नहीं, एडमिशन उसको अपने खुद के मेहनत से और खुद के कैपेबिलिटी पे उसको करना पड़ेगा। तो हम जो जैसे कॉलेज की फीस रहेगी, उसको जब एडमिशन मिल जाएगा वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई पहले कर सकती है, वो बता सकते हैं हम ये कॉलेज में मैं कोशिश कर रही हूँ। कई बार बच्चे होते हैं कि माँ बाप भी सोचते हैं कि भाई पैसा नहीं है, क्यों अप्लाई करके क्या करोगी, कि मेडिकल में तो इतना खर्चा है और है, तुम मत करो। तो हम ये बोलते हैं कि तुम ये बता सकती हो कि मैं ये कोर्सेज में अप्लाई करूंगी, लेकिन एडमिशन कराने का काम वो बच्चे का खुद का होगा।
0: सर बहुत बार ऐसा देखा गया है कि सुविधा मिल रही है इसलिए बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, बाद में उनका उतना इंटरेस्ट नहीं रहता उसमें, इसके लिए आपने कुछ योजना बनाई है?
1: हाँ, तो हम लोग क्या है कि केवल स्कॉलरशिप नहीं देते हैं, हमारे पास पूरी टीम है, हम उसको एंड टू एंड फॉलो करते हैं कि भाई उसको हर सेमेस्टर का उसको अपना रिजल्ट देना पड़ता है, और रिजल्ट में मार्क्स कम आते हैं तो हमारी टीम के लोग उससे चर्चा भी करते हैं, कहीं पे उसको जेन्युइनली प्रॉब्लम है। तो कई बच्चे होते हैं उसको अंग्रेजी में दिक्कत हो जाती है, खासकर जो गांव से और छोटे तबके से लोग आते हैं, तो उनको अंग्रेजी में एक्स्ट्रा क्लासेस चाहिए और चाहिए, तो हम उसमें उसको काउंसलिंग भी करते हैं। लेकिन अगर ऐसा महसूस होता है, लकीली अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस होगा कि इस इज टेकिंग अस फॉर ग्रांटेड, उसको पढ़ने का इंटरेस्ट ही नहीं है, तब उनको यही बोलते हैं भाई फिर क्यों है क्या है कि भाई स्कॉलरशिप किसी और के हक को क्यों मारने का, जब तुम्हारा इंटरेस्ट ही नहीं है, पढ़ना ही नहीं है, तो वी देन टेल हर दैट कि भाई आगे से स्कॉलरशिप तुम्हारी बंद हो जाएगी। लेकिन वो चूंकि पढ़ाई में कमजोर है तो उसके लिए हम उसका बंद नहीं करेंगे, हम उसकी सहायता करने की कोशिश करेंगे, जहां जहां उसको कमियां आ रही है उसको आगे कैसे बढ़ाया जाए।
0: सर इसमें विद्यार्थियों के पालक है या विद्यार्थियों के माता पिता है, उनका भी कुछ रोल रहेगा?
1: हाँ, तो हम उनसे भी मिलते हैं, सिलेक्शन के पहले भी मिलते हैं और बाद में भी उनसे मिलते हैं। जैसे हमारा सालाना भी एक प्रोग्राम होता है, बीच में तो हमारी टीम करती ही रहती है, हम सालाना एक प्रोग्राम करते हैं, इसमें मैं खुद भी जितने भी बच्चे लड़कियां जो हमारे साथ में स्कॉलरशिप में हैं और उनके जो अभिभावक हैं उनसे मैं खुद मिलता हूँ, और मेरी पत्नी शोभा वो भी मिलती है। तो हमारा मकसद यही रहता है कि भाई ये पता लगाना है कि उनके माँ बाप के मन में भी कुछ है, कि भाई उनको बच्चे को कुछ दिक्कत आ रही है पढ़ने में, और खास करके कई अभी तो ये स्कॉलरशिप को चलते हुए मेरे ख्याल से 10 साल हो गया है, तो बहुत सारे हमारे बच्चे हैं जिन्होंने पढ़ाई पूरी कर ली है और जीवन में अच्छा अच्छा काम कर रही है, कुछ तो हिंदुस्तान से बाहर भी उनको अच्छी नौकरियाँ मिली है, तो हम उनका भी एक ग्रुप बना के रखते हैं ताकि वो लड़कियाँ भी जो बाकी नई लड़कियाँ आ रही हैं उनको भी काउंसलिंग कर सकें। तो हमारे ग्रुप के अंदर में एक अलग से ग्रुप सब ग्रुप बन गया है जो कि आईटी से रिलेटेड है, कुछ लोगों को ऐसी छोटी छोटी दिक्कतें भी आती है कि उसको नई नौकरी मिली है, पूना में नौकरी मिली है या बैंगलोर में मिली है, उसको वहाँ रहने में दिक्कत हो रही है, तो जो हमारे स्कॉलरशिप में पुरानी बच्चियाँ थी वो आगे बढ़ के उनको उनका हैंड होल्डिंग करती है। मकसद ये है कि लड़कियाँ जब एक बार हमारे से जुड़ जाती हैं तो हमारे मन में ये है कि हमारी और एक्स्ट्रा इतनी बेटियाँ हो गई, तो मैं अपने मन में सोचता हूँ और मेरी पत्नी वैसे ही सोचती है कि पहले मेरी एक बेटी थी, अब हमारे पास में 250-250 बेटियां हो गई है, तो हम उनको लास्ट तक है ना उनके जीवन में, अभी तो कई लोग हैं उनके बच्चे भी हो गए हैं, कुछ लोग नौकरी छोड़ भी देते हैं, तो ये नहीं है कि हमारे स्कॉलरशिप में आने के बाद में वो जो हमारा रिश्ता है वो केवल 4 साल का ही रहता है, वो रिश्ता फिर जीवन भर का रिश्ता है।
0: सर क्या ये सिर्फ नासिक शहर के लिए है या नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए?
1: नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए।
0: अच्छा, पूरे नासिक,
1: पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट के लिए। उसमें भी क्या है कि रेल मैनेजमेंट चूंकि सरकारी काम नहीं है, तो हम हमारे मन में उसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखते हैं, ऐसे कुछ है कि वो डांग है, पास का इलाका ही है, वहां से कुछ बच्चे आए हैं, तो हमारे नजर में नासिक मतलब नासिक, तो हम उसको ज्योग्राफिकल या कोई लीगल डेफिनेशन में नासिक को नहीं बांधते हैं ना।
0: क्या बात है सर। सर आपने बहुत अच्छी बात की, लड़कियों के लिए जहां पर शिक्षा का अवसर मिलना चाहिए लेकिन मिल नहीं रहा, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी योजना आप लेके आए हैं। तो हमारे जो आज श्रोता जो सुन रहे हैं उनके लिए आप आखिरी एक संदेश क्या दोगे?
1: मैं उनको ये बोलना चाहूंगा कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, और ये स्कॉलरशिप सरकारी स्कॉलरशिप जैसे नहीं है कि आपको केवल कॉलेज का फीस है और है, और ऐसा बैंक का भी नहीं है कि आपको बाद में पैसा वापस देना पड़ेगा। हम बच्चों पे कोई भी दबाव नहीं डालना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि वो जीवन में पढ़े अच्छे से और जीवन में कुछ बने, क्योंकि जब वो कुछ बन जाएगी ना तो आगे से अपने आने वाली पूरी जो उनकी फैमिली रहेगी उसको भी अच्छे से उसका लालन पालन करेगी। तो जो फैमिली के लोग हैं उनके अभिभावक हैं उनसे मेरी खाली एक ही रिक्वेस्ट रहती है कि जो पढ़ लिख जाए ना तो तुरंत उसकी शादी मत कर दो। और शुरू में हमको ऐसा रहता था, लेकिन अब ये पोजिशन में आ गए 10 साल में कि मेरे को, मैं ये भी ट्रैक करता हूँ कि बेकी ऐसा नहीं कि पास हुई और उसको पास होने के पहले ही कई लोग है ना सेकेंड ईयर में शादी कर देते हैं। मैंने कहा शादी तो करना जरूरी है लेकिन पहले उसको अपने पाँव पे खड़े होने दो, शादी में कोई 1-2 साल आगे पीछे में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बच्ची को अपने पाँव में खड़ी होगी तभी ये जो हम विकसित भारत का जो हम लोग सपना सब कुछ सोचते हैं वो तभी पूरा होएगा जबकि हमारी महिलाएं जो हैं वो विकसित होंगी, कि वो जब अपने पाँव पे खड़ी होगी ना तो उस दिन ये देश विकसित होगा।
0: क्या बात है सर, बहुत अच्छी और बड़ी बात आपने कह दी। आप हमारे रेडियो विश्वास पर आए और हमारे श्रोताओं से इतनी अच्छी बातें की, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: धन्यवाद, आपने बुलाया हमको, और मैं यही सोचता हूँ कि भाई आपके रेडियो के थ्रू बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ उनके माँ बाप ये प्रोग्राम को सुन रहे होंगे, तो हमारे स्कॉलरशिप में अप्लाई करें, और ये स्कॉलरशिप जो डिटेल है वो न्यूज़पेपर में रेडियो में सारी डिटेल आती है।
0: तो श्रोताओं हम सुन रहे थे तैनवाला फाउंडेशन के रमेश जी तैनवाला सर से, और रेडियो विश्वास से भी सब श्रोताओं को एक जरूरी बात कहनी है कि तैनवाला फाउंडेशन के लिए ये शिष्यवृत्ति योजना बच्चियों के लिए लड़कियों के लिए है, अपने करियर के लिए वैद्यकीय पैरामेडिकल अभियांत्रिकी नर्सिंग बीटेक आर्किटेक्चर CA बी फार्मेसी BEd ऐसा कोई भी आपका सपना हो तो आप पूरा कर सकती हैं। आपको 30 जून के पहले अप्लाई करना है, उसके लिए संपर्क करें 9881096196316 और 8600003460 पे, और सुनते रहिए रेडियो विश्वास 90.8 कम्युनिटी रेडियो, आपकी जिंदगी आपकी आवाज़।

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉलोनी जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए सर।
1: और आपका कार्यक्रम फोन लगा, आपसे बातचीत हो रहा है, बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लगा और फोन लग गया। चलिए ठीक है। और दिशा मूर्ति मॉडल के साथ पसंद की गीत बताता हूँ। मेरा साया का गाना चला दीजिएगा, पुराना है ना, नैनों में बदरा छाए, लता मंगेशकर का।
0: जी ठीक है सर, ठीक सुनवाएंगे।
1: सबसे पहले गीत आपको के निर्देश आपको कोई भारत श्रोता को रेडियो विश्वास में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, आपकी शहरी केंद्र निर्देशक आपको पूरे भारत श्रोता को श्रोता को डिजिटल कर उसका पसंद रविवार को होगा तो सुना दीजिएगा। इसी तरीके से धन्यवाद
0: जी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।

0: आई नहीं वो?
1: आएगी।
0: नरेश कैसे लग रहे हैं?
1: आज उस पार्टी में कत्लेआम हो जाएगा, ऐसी लग रही हो।
0: कुछ घबराहट से हो रही है।
1: वजह क्या है?

0: हेलो
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉल रही, जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से इंद्रभान सिंह बोल रहा हूँ।
0: जी जी बोलिए सर।
1: और आपका कार्यक्रम फोन लगा आपसे बातचीत हो रहा है, बहुत खुशी लग रहा है, बहुत अच्छा लगा और फोन लग गया। चलिए ठीक है। और दिशा मूर्ति मॉडल के साथ पसंद की गीत बताता हूँ। मेरा साया का गाना चला दीजिएगा, पुराना है ना, नैनों में बदरा छाए, लता मंगेशकर का।
0: जी ठीक है सर, ठीक सुनवाएंगे।
1: सबसे पहले गीत आपको के लिए निर्देश आपको कोई भारत श्रोता को रेडियो विश्वास में जुड़े सभी लोगों को, आपके परिवारजनों को, रिश्तेदारों को, आपकी श्रेणी के लिए निर्देश आपको पूरे भारत श्रोता को श्रोता को डिले कर उसका पसंद रविवार को होगा तो सुना दीजिएगा। इसी तरीके से धन्यवाद
0: जी, धन्यवाद सर, धन्यवाद।

0: हेलो
1: जो कर रहा है दिखता मेरे से कर उसकी विषय वेद के विषय वेद के उसकी वेद के तो
0: हो बोला ना
1: मैंने गाने जी तो क्या सत्य के भगवान ही हम सत्य गाने ही ये तो सत्य के भगवान ही
0: हो चले चल ठीक है
1: गायक नहीं बनके वक्त के बोले गाने से
0: हो चल ठीक है
1: धन्यवाद।

दूर होते होते वो आवाज डूब गई, सुनने के लिए सिर्फ यादें रह गईं। चंदन चला गया और इतनी दूर चला गया कि आरती के लिए वो फासले तय करना नामुमकिन हो गया। मुड़ के जब भी देखा चंदन का चेहरा नजर नहीं आया। गूंजते हुए माजी से सिर्फ इतना ही सुनाई दिया, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही पहचान है गरिया।

0: छोटे सपने हमार, छोटी आशा छोटा प्यार।
1: ए क्या अंग्रेजी बोलता है, सीधा साधा बोल।
2: अगर फिर कभी तुम फैक्ट्री में कदम रखा तो उनको बॉयलर में डाल देगा, तुम लोग पर इंजन चला देगा।
3: देखो काय लोग, देखो देखो तुम्हारा, देखो वो हरामखोर मुझे लात जूते से मारता रहा और तुम आकर खड़े हो गए। बस चुपचाप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक दिन वो तुम लोगों को भी मारेगा। मैं भी ऐसे ही खड़ा हो जाऊंगा चुपचाप आकर। एक दिन वो तुम सबको नौकरी से निकाल देगा, तुम्हें खड़े होकर हटूंगा। उसने मुझे मारा और कोई बचाने भी नहीं आया। ठीक है, मार मार के लहू लुहान कर दिया सारे, काम भी किए जाओ और जूता भी खाए जाओ, ये इनाम मिला है 30 बरस की किस्मत का। देखा ए! हो
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे,
4: सोता है बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे,

0: भोले भाले ललुआ, भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
1: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले भाले ललुआ।

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग, जा भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी, हरेगा विदेशी बा